ही न ले लूं मेरी घर हुई न शादी तू कैसे बनेगी दादी तू कैसे बनेगी दादी रहम का डाल दे पल्ला प्यार का मार दे हल्ला।

0: भागवाई पेली हिरेला योग बापे नवरा ठरिवला योग बापे नवरा ठरिवला
1: ठरिवला नवर क्या छे तुम।

0: चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं

0: பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க
1: काय ग सुनीता तुझ्या बुटीक मध्ये आजकाल एवढी गर्दी कशी काय
2: अगं मी रेडिओ विश्वास 90.8 वर जाहिरात दिली
1: खरं की काय पण त्यासाठी खूप पैसे लागले असतील ना
2: अगं अजिबातच नाही फक्त 100 रुपयात माझ्या व्यवसायाची जाहिरात झाली